0: अपनवे आपको पर को निवे न कोई तरत रज तो लिए निवे सो गौरा हो अपराधी दुना निवे जो हंता मरगा है शिष निवाये किया थे जारी देख सुदे जाहे महला पहला
1: पढ़ पुस्तक संध्या वादन सिलपुर स्वर्ग समागम मुख झूट खनसार त्रिपाल तिहार विचारन गल माला तिरक लटन धोती वस्त्र पटन जय जान स्वर मंकर मंत्र

जो गल चले पाहे चौकण वाला नाया बह चौके पाया सिखा कने चढ़ाइया गुरु ब्रह्म थिया। ओ मोहा ओ चढ़ पया वे तगा गया महला पहला।

0: सिख सुन महली हो।
1: फिर जी सोवन ढाला सोने दी टली हुई काया, कृष्ण माला लम्मी माला, ओ जेड़ा इथे गुरु साहब ने भी जिवें कृष्ण जी माला पहनते सी ते गोडियां तक लमीरी, ओ उस रूप विच जप हो तुसी सहेली हो। हे सखियो तुसी सारियां जपो हुण किन्नू, उस अकाल पुरख नूं उहदी आराधना करो। जदों उहदी आराधना करोगे फिर की होएगा, जम द्वार ना हो खड़ियां, फिर तुहानू जमा दे दरवाजे ते खड़िया नहीं होना पैना। फिर सिख सुनो महेली हो, तुसी कहिंदे ए मेरी सिख्या सुनो। हे इस्त्रियो, महेलियो शब्द इस्त्रियां वास्ते वरत्या, अपने सारिया वास्ते जीव इस्त्री। हे जीव इस्त्रियो ए सिख्या सुनो कि तुसी उस अकाल पुरख की आराधना करो। जदों उहदी आराधना करोगियां फिर जम द्वार ना हो खड़िया, फिर तुहानू जमा दी फाही नहीं पएगी, जमा दे दर उत्ते खड़ी।

आप जी करो कृपा अपनी अमृतमय बाणी विचों पावन पवित्र हुक्म दिदात बख्शो, हुक्म अनुसार जीवन ज्यों दी समर्था बख्शो। अखर वादा घाटा भुल चुक माफ करने, सिख पढ़ दे सुन दे सरबत लाहे बंद होवन। नानक नाम चढ़दी कलम तेरे पाने सरबत दा पला। दोहराम आग्या पई अकाल की, सब सिखन को हुक्म है। गुरु ग्रंथ जी माने जो प्रभु को

दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए होवे सिफत कसम दी नूर अरसु गुरसु चटी तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है।

श्री हर कृष्ण ते आइए जठ सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमर कर नौनिदा बिताए। सब थाई हुई सहाय दसवां पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी। सब थाई हुई सहाय दसां पातशाहियां दे जोत। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीयां दे पाठ विदारदा ध्यान धर के बोलो जी। पंजां प्यारियां चौहां साहिब जादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां। जिन्हां नाम जपया वंड सकिया देख चलाई तेग वाही। देख के अंडठ कीता

अखरवादां घाटा भुलचुक माफ करनी आप जियां दर ते समूह साध संगत दी हाजरी दर प्रवान करनी तिल फुल पे ढावां दर प्रवान करनी यात्रावां सफ

पवित्र पवित्र कड़ा पुरसा जी देख सज के हाजिर है धर प्रवान हो गए प्रवान होया प्रसाद समूह साध संगत विच वरतौन दी आग्या बख्शो जो जी सके आप जिया दा पवित्र नाम सतनाम श्री वाहे गुरु जप आप जी करो कृपा अपनी अमृतमय बाणी विचों पावन पवित्र हुक्म दी रात बख्शो हुक्मानुसार जीवन जीवन दी समर्था बख्शो अखर वादा घाटा भुल चुक माफ करन दी सिख पढ़ दे सुन दे सरबत लाहे बंद होवा ना नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सरबत दाम पला दोहरा वागया पई अकाल की सब सिखन को हुक्म है गुरु ग्रंथ जी मान्यो जो प्रभु को मिलवो जो है राज करेगा खालसा

सुखो टल गुर सेवियै एनस सहज सुभाए दर्शन परसिया गुरु के जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों चटी है तो

ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੇ ਸਭ ਕੋਈ ਕੇਵਲ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗਹਿਰ ਗਮੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ਕੋਏ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕੇਵੜ ਚੀਰਾ ਰਹਾਓ ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰਹਾਈ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ ਸਭ ਸੱਤ ਸਭ ਤਪ ਸਭ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਸਿੱਧਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਤਦੋਂ ਸਿੱਧੀ ਕਿੰਨੇ ਨਾ ਪਾਈਆ ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਨਾ ਹੀ ਠਾਕ ਰਹਾਈਆ ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਸਿਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹੇ ਤਿਸੇ ਕਿਆ ਚਾਰਾ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਵਾਰ ਨਹਾਰਾ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਊਂ ਆਖਣੇ ਔਖਾ ਸੱਚਾ ਨਾਉਂ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੇ ਭੂਖ ਉਤ ਭੁੱਖੈ ਖਾਏ ਚਲੀਹੈ ਦੁੱਖ ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਨਾਏ ਰਹਾਉ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ ਆਖ ਥੱਕੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜੇ ਸਾ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਹੇ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਗ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ ਨਾ ਚੁੱਕੈ ਭੋਗ ਗੁਣੇ ਹੋਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਏ ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ ਜੇ ਵਡਿਆਪ ਤੇਵੜ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਜੈਨ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਰਾਤ ਖਸਮ ਵਿਸਾਰੀ ਤੇ ਕਮਜਾਤ ਨਾਨਕ ਨਾਵੇਂ ਬਾਇਸ ਨਾਥ ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਪੁਰਖਾਂ ਬਿਨੋ ਕਰੋ ਗੁਰਪਾਸ ਅਮਕੀਰੇ ਕਿਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨਾਈ ਕਰਦਿਆ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ ਮੋਕੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਸਖਾਈ ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਮਰੀ ਰਹਿ ਰਾਸ ਰਹਾਉ ਹਰ ਜਨ ਕੇ ਵਡਭਾਗ ਵਡੇਰੇ ਜੈਨੋ ਹਰ ਹਰ ਸ਼ਰਧਾ ਹਰ ਪਿਆਸ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਸਿਹੀ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਾਸ ਜੈਨੋ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਰਸ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਭਾਗਹੀਨ ਜਮ ਪਾਸ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ ਧ੍ਰਿਗ ਜੀਵੇ ਧ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ ਜਿਨ ਹਰ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ ਪਾਈ ਤਿੰਨ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਲਖਾਸ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਸੰਗਤ ਜਿਤ ਹਰ ਰਸ ਪਾਇਆ ਮਿਲ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਾਨ ਚਿਤਵਹੇ ਉਦਮ ਜਾ ਆਹਰ ਹਰ ਜੀਓ ਪਰਿਆ ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਤਾਕਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆਗੇ ਕਰ ਧਰਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ ਰਹਾਉ ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁਤ ਬੈਂਤਾ ਕੋਏ ਨਾ ਕਿਸ ਕੀ ਧਰਿਆ ਸਿਰ ਸੇ ਰਿਜਕ ਸਮਾਹੇ ਠਾਕੁਰ ਕਾਹੇ ਮਨ ਭਉ ਕਰਿਆ ਊੜੇ ਊੜਿਆ ਵੈ ਸੈਂ ਕੌਨ ਸਾਂ ਤਿਸ ਪਾਛੇ ਵਚਰੇ ਛਰਿਆ
दिन कवन खलावे कवन चुगावे, मन में ही सिमरन करया। सब निदान दस अष्ट सिदान ठाकुर कर तल तरिया। जन नानक बल बल सद बल जाइए, तेरा अंत ना पारा भरिया। सब निदान दस अष्ट सिधान ठाकुर कर तल तरिया। जन नानक बल बल सद बल जाइए, तेरा अंत ना पारा भरिया। राग आसा महला चौथा, सो पुरख इक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन, हर गम्मा गम्मा पारा। सब त्यावहें सब त्यावहें तुझ जी, हर सच्चे सृजनहारा। सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दातारा। हर त्याव हो संतो जी, सब दुख विसार नहारा। हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा। तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी, हर एको पुरख समाणा। एक दाते एक पेखारी जी, सब तेरे चोज बिडाणा। तू आपे दाता आपे भुगता जी, हों तुद बिन अवर ना जाना। तू बार ब्रह्म बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख वखाणा। जो सेव है जो सेव है तुद जी, जन नानक तिन कुरबाणा। हर ते आवहें तुद जी, से जन जुग में सुखवासी। से मुक्त पाए, जैनो हर ते आया जी, तैना टूटी जमकी फांसी। जिन निरभौ जिन हर निरभौ ते आया जी, तिनका भौ सब गवासी। जिन से बया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी। से तन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी, भरे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलाहन तुद जी, हर अनेके अनेक अनंता। तेरी अनेक करे हर पूजा जी, तब ताप ही जप ही बयंता। तेरे अनेक पढ़े बहु सिमरत शास्त्र जी, कर क्रिया खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी, जो भावे मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख अपरंपर करता जी, तुद जे बड़े अवर ना कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी, तू नहीं चल करता सोई। तुदे आपे भावे सोई वरतै जी, तू आपे करहे सो होई। तुदे आपे सृष्ट सब उपाई जी, तुदे आपे सृज सब गोई। जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सब सिका जानोई। आसा महला चौथा, तू करता सचियार मेंडा साई। जो तो भावे सोई थीसी, जो तू दहे सोई हो पाई। रहाओ
सब तेरी तू सबनी ते आया जिसनों कृपा करें तैनों नाम रतन पाया गुरमुख लादा मनमुख गवाया तुदया बिछोड़या आ मिलाया तू दरिया ओ सब तुझ ही माहे तुझ में दूजा कोई नाहे जी जन सब तेरा खे विजोग मिल बिछोड़या संजोगी में जिसना तू जाना है सोई जन जाने हर गुण सद ही आंख बखाने जिन हर सेवया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद में दूजा अवर ना कोए तू कर कर वेख है जाने है सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए आसा महला पहला तित सरवरड़े पाईले निवासा पानी पावक तिन्हे किया पंक जो मोह पग नहीं चाले हम देखा तह डूबियले मान एक न चेतस मूड मना हर विसर तेरे गुण गलिया रहो ना हो जति सती नहीं पड़या मूरख मुगदा जन्म पया प्रणवंत नानक तिनकी शरणा जैन तू ना ही विसरया आसा महला पंजवा भई प्राप्त मानुख देहुरिया गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया अवर काज तेरा किते ना काम मेल साध संगत भज केवल नाम स्रंजाम लाग पवजुल तरन कै जन्म वृथा जात रंग माया कै रहो जप तप संजम धर्म ना कमाया सेवा साध ना जन्ने आहार राया कहो नानक हम नीच करम्मा शरण परे की रखो हो शर्मा जप तप संजम धर्म ना कमाया सेवा साध ना जन्या हर राया कहो नानक हम नीच करम्मा शरण परे की रखो हो शर्मा एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चाओ पाई अमरी करोहा दै रक्षा पूर्ण होए चित्त की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सबै तुम काब हो आप हाथ दे मुहे बचाब हो सुखी बसै मोरो परवारा सेवक सिख सबै करतारा मोर अच्छा निज कर दे करिए सबै रन को आय संगरिए पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें छा कोई अवर ना ध्याऊं जो वर चहो सो तुम ते पाऊं सेवक सिखों मार तारिये चुन चुन शतर हमारे मारिये आभाद मुझे उबरिये मरण काल का त्रास निवरिये हो जो सदा हमारे पच्छा
श्रियास्तु जो करिहो रक्षा, राख लियो मोहे राखण हारी, साहिब संसहाय प्यारे, दीन बन दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतरदस कंता, काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जवन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा जू थियो, जवन काल सलोक सवारा, नमस्कार हैं तहे हमारा, जवन काल सब जगत बनायो, देवदैन जक्षण उपजायो, आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा, नमस्कार तिसही को हमारी, सकल प्रजाजन आप सवारी, शिवकन को शिव गुण सुख दियो, शत्रण को पलमो बद कियो, कटकट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछाणत, चिंटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछाने, कट कट के बड़ बड़ की जाने, जवद करख करा कर तारा, प्रजा तरत तव देह अपारा, जवे आ करख कर तुहु कब हूं, तुम मैं मिलत देह धर सब हूं, जेते बदन श्रेष्ठ सब तारे, आप अपनी बूझ उचारे, तुम सब ही ते रहत नर अलम, जानत भेद भेद अर आलम, रंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनीर अनाद असंभ, ताका मूढ़ उचारत पिता, जाको पेव ना पावत बेता, ताको करपाहणे अनुमानत, महामूढ़ कछ भेद न जानत, महादेव को कहत सदाशिव, रंकार का चीनत नह पिव, आप अपनी बुध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तो है तेती, तुमरा लखाना जय पसारा, किह विद सजा प्रथम संसारा, एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राव कहीं पूपा, अंडा जेरा से तज कीनी, उत्पज खान बहर रच दीनी, कहो फूल राजा हवै बैठा, कहो सिमट भयो शंकर अकैठा, सगरी सृष्ट दिखाए अचंप, आजुगा स्वरूप स्वयंप, अब रक्षा मेरी तुम करो, सिखे वार या सिख संघरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेच करो रणगाता, जे आस तो जे तव शरणी बरे, तिनके दुष्ट दुखत हवाए मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सवटारे, जो कल को इक बार ते है, ताकि काल निकट नह है, रच्छा हुए ताही सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला, कृपा दृष्ट तन जहे न हरयो, ताकि ताप तनक मैं हरे हो, रिद्ध सिद्ध घर मोसव हुई,
दुष्ट शहा शवाय सके ना कोई, एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फांसती ताहे ओबारा, जिन नर नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट दोख तेरा, खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी आप हाथ दे ले हो ओबारी, सर ठो मोह हो सहाई दुष्ट दोख ते ले हो बचाई, खड़ के मैं शरण तिहारी आप हाथ दे ले हो ओवारी, सर्वठोर मोह हो सहाई दुष्ट दोख ते ले हो बचाई। सवैया पाए गहे जब ते तुम्हारे तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो, राम रहीम प्राण कुरान अनेक कहे मत एक ना मान्यो, सिमृत शास्त्र वेद सभाए बहु भेद कहे हम एक ना जान्यो, सिरियस पान कृपा तुम री कर मैं ना कहो सब तो हे बखाने दोहरा, सगल द्वार कौ छड़ के गए हो तोहारो द्वार, बही गए की लाज अस गोविंदास तोहा, सगल द्वार कौ छड़ के गए हो तोहारो द्वार, बही गए की लाज अस गोविंदास तोहा, राम कली महला तीजा अनंत इक ओंकार सतगुर प्रसाद, आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुर ता वाया सहज सेती मन वजियां वाधाइयां, राग रतन परवार परियां शब्द गावन आइयां, शब्दो तंगावो हरी केरा मान जिनी वसाया, कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया, ए मन मेरे आ तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना, अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारना, सबना गल्ला समृत स्वामी सो क्यों मनो विसारे, कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले, साचे साहेबा क्या नाही घर तेरा, घर ता तेरा सब किच है जिस दे सो पावे, सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे, नाम जिनके मन वसया वाजे शब्द कनेरे, कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरे, साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा, जैनो भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन है वसया, जैनो इच्छा सब पुजाइया
सदा कुर्बान कीता गुरु बिटहो जिस दिया एहे बड़ियाईया कहे नानक सुनो संतो शव धरो पे आरो सच्चा नाम मेरा आधारो वाजे पंशव तित कर सुभागे कर सुभागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दो तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तुद जिन कौ से नाम हर के लागे कह नानक तैसक होया तित घर अन्न हद बाजे आनंद सुनहो वड्डे भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल बसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पय सरसे पूरे गुर ते जानी सुन ते बोनी कहते पवित सतगुर रहा पर हुरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अन्नहाद तूरे सुनते पुनी कहते पवित सतगुर रहा पर उरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अन्नहाद तूरे मुंदावणी महला पंजवां थाल विच तिन वस्तु पईओ सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबसे आधारो जे को खावे जे को पुंचै तिसका होए उदारो एह बस्त तजी नह जाई नित नित रख और तारो तम संसार चरण लग तरिय सब नानक ब्रह्म पसारो स्लो महला पंजवा तेरा कीता जातो नाही मैनो जोग की तोई मैं निर्गुण आरे को गुण नाही आपे तरस पायोई तरस पया मेहरा मत होई सतगुर सज्जन मिले आ नानक नाम मिले ती मां तन मन थी वै हरे आ तरस पाया मेहरा मत होई सतगुर सज्जन मिले आ नानक नाम

हो वै सिफत खसम मंदी नूर अरसों कुरसों झटी है तुद डिठे सच्चे पातशाह हो माल जन्म जन्म दी कटी है सज्जन सच्चा पातशाह हो सिर शाहां देशा हो जिस पास बैठिया सोही है सबना दा वेसा हो सज्जन सच्चा पातशाह हो सिर शाहां देशा हो जिस पास बैठिया सोही है सबना दा वेसा हो। सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी तनासरी महला चौथा हम अंदरे अंद बिख बिखराते क्यों चल है गुर चाली सत गुर दया करे सुख दाता हम लावे आपन पाली हम अंदले अंद बिखे बिखराते क्यों चल है गुर चाली सतगुर दया करे सुख दाता हम लावे अपन पाली गुर सिख

हर हर कथा निराली रहाऊ, हर के संत सुनो जन पाई, गुर सेवियो बेग बेगाली, सतगुर सेव खर्च हर बंद हो, मत जानू आज के काली।

सोहिला राग गौड़ी दीप की महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद जय कर किरते आखिया करते गावे विचारु तित कर गावो सोहिला सिवरी सृजनहारो तुम गावो मैं नृपाओ का सोहिला हाँ वारी जित सोहिला सदा सोखोय रहाओ नित नित जेड़े संभाली अन्ना देखेगा देवन हार तेरे दाने कीमत ना पवाए ते दाते कौन शुमार संभसा लिखिया मिल कर पाओ तेल देव सज्जन सीसड़िया जिहो वैसा सिमेला

पूर्व लिखित लिखे गुरु पाया मंदर लि मंडल मंडा है कर साधु अंजलि बन वड्डा है कडन डोत बन वड्डा है रहाउ साकत साधना जानिया अंदर अंतर मैं गंडा है ज्यों ज्यों चलाए चुवै दुख पावे जमकाल सह से डंडा है हर जन हर नाम समाने दुख जन मर भव खंडा है अविनाशी भगवाया परमेश्वर व सोभ खंड ब्रह्मंडा है हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे राख राख वड वड्डा हे जन।

चलो अरलाह आगे बसंस वेला आओ दट दिन श्रेणारे मन गुर मिलका सवारे राय संसार विकार संसे मैत्र ब्रह्म ज्ञानी जिसे जगाए पियावे रस कत कथा दिन जानी।

सत्याभ्रमाण सत्याधराम सत्या दिवाण सत्याभ्रमाण सत्यातरा कर्म सच्चा निषाण सचे तुदा खिलाख करोड़ सचे सब तार सचे सब जोर सचे तेरी सिवत सची सला सची तेरी कुदरत

0: आवत कट्यो ना जात प्रेम रस चरण कमल संग दावन बंदियो ना जात विदय मन दर्श मग पावक जरियो ना जात रहो जन तूर लग नीर न साकस बोर चला हर पंथ पग नानक रोग दोख अगमो छिदा हर नाम खग।
1: उद्दम कर लागे बहु पाती बिच रह अनेक शास्त्र बहु खटुआ पसम लगाए तीरथ बहु प्रमते सूखम देह बंद है बहु जटुआ बिन हर भजन सगल दुख।

सत सत हर सत सत सत्ते सत पणिए दूसर आन और पुरख पुरातन सुनिए अमृत हर को नाम लैत मन सब सुख पाए जे रसन चाख्यो तह जन तृप्त अगाए जे ठाकुर सो प्रसन्न प्यो सत्संगत है प्यार हर गुरु नानक जिन परस्यो तिन सब कुल कियो उदार सच सबा दीवान सच सच्चे पैतरियो सच्चे तखत नवास सच तपावस करियो सच

वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब कमाल, साहिब जमाल, साहिब बरकत, सर्व सांझी वालता दे रहवर, बेअंत भगतां दी टेक, दसां पातशाहियां दी जागदी जोत, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जीआं दे पावन और पवित्र स्थान गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहिब जीआं दे अमृत वेले दे दर्शन कर रहे हाँ, अमृत वेले दीआं हाजरियां लगवा रहे हाँ। जो सतगुरां ने सानू पावन हुक्म दी दात बख्शी है, सो पावन हुक्म तनासरी राग दे अंदर तीजे पातशाह धन धन श्री गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जीआं दा शब्द है, जो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीआं दे अंदर 665 ਅਤੇ 666 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਈਮਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਕੀਮਤੀ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੀ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਕਾਚਾ ਧਨ ਸੰਚ ਹੈ, ਮੂਰਖ ਗਵਾਰ ਮਨਮੁਖ ਭੂਲੇ, ਅੰਧ ਗਵਾਰ

मन चाओ सिखी सिख्या गुर विचार नदरी कर लंघाए पार कोलू चरखा चक्की चक थल वारो ले बहुत अनंत लट माधाणिया नगाहा पंखी पौधी अलैन न सह सुए चढ़ पाई है जंत नानक पौध्या गणत नंत बंदरवंत भाए सोए पाया कृत नचै सब को।

पौड़ी सिंह सी संतोखी जिनी सचो सच त्याया उन्हीं मंदे पैर न रखियो कर धर्म कमाया नी दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा।